0: आप सब लोग चार मेगा हर्ट्ज को रेडियो आदि खोले रही क्या हो?
1: नमस्कार, म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लायो। तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4।

0: सुनत नहीं हम लोग आने में दिल्ली बजे का
1: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।